नमस्कार हो नमस्कार नाई, ये बुढ़ौती में बूढ़ा बूढ़ी का बात कही जाता। अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भाईल भाई आ ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा ई होखे।

0: Manaslu World College, a home for future leaders. Tower Hill, Kathmandu.
1: यही फागुन 14 गते महाशिवरात्रि को दिन तपहरू को नजीक को सिनेमा घर में नेपाली कथानक चलचित्र लाज शरणम

0: मार्का खांची ओबीसी सीमेंट देश को सीमेंट।
1: VPN नेट तपाईको आफ्नै स्थानीय आईएसपी भरपर्दो इन्टरनेट साथी। अब ढिलो इन्टरनेटलाई बाई बाई। VPN नेटले ल्यायो नयाँ व्यवस्थापनका साथ छिटो स्थिर र भरपर्दो इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवा। हाम्रा विशेषताहरू: हाई स्पीड इन्टरनेट, अल्ट्रा फास्ट स्पीड, 24/7 ग्राहक सेवा, सस्तो र आकर्षक प्याकेज, डेडिकेटेड फाइबर नेट सहित घर, स्कूल, कलेज, अस्पताल, सहकारी एवं कर्पोरेट अफिस का लागि उपयुक्त। जनेपुरीमा श्रीकृष्ण अष्टमी र हरितालिका तीजको विशेष अवसर। नयाँ जडानमा आकर्षक छुट, फ्री राउटर, तार सुविधा शर्त अनुसार। अन्य विविध सुविधाको लागि अहिले नै जडान गर्नुहोस् र डिजिटल दुनियाँसँग जोडिनुहोस्। VPN नेट, जसले तपाईँको हरेक कामलाई अघि बढाउँछ। ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रणाली VPN नेट, सम्पर्क प्रधान कार्यालय भुटवल 9, फोन 071-438-346, 071-438-014, 071-438-016 वा रूपन्देहीको नजिकको VPN काउन्टरमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। अब ढिलो इन्टरनेटलाई बाई बाई।
2: यसो बिहे पार्टीमा हेर्यो, सबैका बुढी झपक्क गहनामा सजिएर आउने। मेरी बुढीलाई पनि यसपालि एक सरो गहना बनाइदिनु पर्यो भनेको, कहाँ बनाइदिने होला?
3: तपाईँ बनाइदिन्छु त भन्नुहोस्, बनाउने ठाउँमा त म लैहाल्छु नि। गहनामा खास सधैँको विश्वास।
2: आकर्षक डिजाइनका भने जस्ता सोचे जस्ता गहनाहरूको एक मात्र विश्वसनीय स्थान भीम आभूषण गहना गृह,
4: तिलोत्तमा 5, मडगिराम रूपन्देही।
3: हजुर, हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइनका सुन चाँदीका रेडीमेड गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार बिना रसायनका गहना निर्माण गरिन्छ। ए सुन्नुहोस् त, पुराना गहना सँगै नयाँ गहना साट्नुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ है।
5: सम्पर्क नम्बर 071-560-090, मोबाइल नम्बर 98-72-1282 र 98-70-24-870।
6: रेडियो लुम्बिनी, रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ज। शान्तिको आवाज।
7: मै खडेरी धुर बनख भुर्र उठ्छु, तब तू मोर लाख पानी बनकर बरसत। एक घची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तुहिन बाप बना कर उड़ा कर फिर से मैं इनसे दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम, हमा मिलन असंभव, कारण तू बद्री मैं धरती। हाँ, वो एक दूसर से दूर रख पे करल कब्बुनी और रेना मैया की एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364660।
1: सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरौं। सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा सामाजिक मर्यादा र शिष्टाचारको पालना गरौं। यात्रु चालक र सहचालकले एक आपसमा मर्यादित र शिष्ट व्यवहार गरौं। सार्वजनिक यातायातका साधनमा हानि नोक्सानी नपुर्याउं। सवारी साधनमा भाडा दर देखिने गरी तोकिएको भाडा दर मात्र लिने र दिने गरौं। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको समय तालिका सार्वजनिक गरी त्यसको पालना गरौं। तोकिएको स्थानमा मात्रै यात्रु उकाल्ने र ओराल्ने गरौं। आरक्षित सिटमा सम्बन्धित यात्रुलाई नै प्राथमिकता दियौं। ट्राफिक नियमको पालना गरौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालय, राप्ती उपत्यका, देउखुरी, नेपाल।
2: साप के काटे में ध्यान देवे वाला बात, साप के काटल इंसान घबराई सकत है तो उ इंसान के हौसला देवा जाए। साप के काटल इंसान के तुरंत अस्पताल या सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगावा जाए। झाड़ फूक के तरफ न जावा जाए। अपने घर के नजीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है जानकारी रखा जाए। अपने घर के आसपास झाड़ी न रखा जाए और हमेशा वातावरण सफा रखा जाए।
3: अनुरोध है, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, राप्ती उपत्यका, देउखुरी, नेपाल।
4: अपाङ्गता भएका महिलाका अधिकारका कुरा,
5: मानव अधिकारको महासन्धिमा यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेर यो मौलिक अधिकारमा व्याख्या गरिएको छ।
6: सफलता अनि संघर्षका कथा,
7: म दृष्टिबिन भइसकेर पढ्न थालेपछि होइन मैले पढे भने त कुनै ठाउँ पाउँछु होला नि भन्ने पोजिटिभ थिङ्किङले नै गर्दा म यहाँसम्म आइपुगे।
4: यो हो कार्यक्रम अपाङ्गता अधिकारका कुरा। डिसेबिलिटी राइट्स फन्डको आर्थिक सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालको उत्पादन कार्यक्रम अपाङ्गता अधिकारका कुरा।
8: रेडियो लुम्बिनी र तिनोतमा टेलिभिजनबाट हरेक मंगलबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म।

नमस्कार। रेडियो लुम्बिनी साँझ 7 बजे हाल खबर में दिवाकर पंथी को स्वागत छ। यो हाल खबर एफएम 96.8 मेगाहर्ज, अनलाइन www.radiolumbini.org, विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन र रेडियो लुम्बिनी को फेसबुक पेज बाट प्रत्यक्ष सुन्न सकिन्छ। हाल खबर को शुरू में मुख्य खबर शीर्षक। पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा पक्राउ प्रकरण में विपक्षी द्वारा संसद में कड़ा विरोध, सरकारसँग जवाफ माग। जनसंख्या वृद्धि का लागि सुत्केरी विधालाई प्रोत्साहन गरिएको स्वास्थ्य मंत्री मेहता को भनाई, महिलालाई 6 महीना र पुरूषलाई 42 दिन सुत्केरी विधा प्रस्ताव। चाडपर्वमा यात्रुले भोग्ने शास्ति रोक्न सरकारलाई संसदीय समिति को निर्देशन, आर्थिक गणना लगत प्रशोधन प्रक्रिया शुरू। केरुङ तातोपानी र कोरला तीनवटै नाका बन्द भएसँगै चीनसँगको स्थल व्यापार ठप्प, राष्ट्रपति सांसद विरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर दुर्गा प्रसाई पक्राउ। गुल्मीमा माछा मारिरहेकी महिलालाई खोलाले बगायो, भारतमा ककरोच जनता पार्टीद्वारा जेलभरो आन्दोलनको घोषणा। बुटवलमा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित रनिङसिल पुरूष भलिबल प्रतियोगिता शुरू, भारत र श्रीलंका सहित 8 समूह प्रतिस्पर्धामा। र एशियाली खेलकूद क्रिकेटमा वर्षाले खेल रद्द भएपछि भारत र पाकिस्तान सेमी फाइनलमा।